आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: नहीं बताऊंगी, तुझे दिल की बात बता दूं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

लो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम्स बैरन एंड बैरन बिकम्स भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: कहाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो।

अच्छा जी। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 11 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 नून इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: अरे आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने और जो काम करना नहीं चाहता था वही करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: हा? मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कहते हो रोज यही पुकार सुनने के लिए आया करूंगा, आखिर क्यों?
1: इसलिए कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
0: प्यार? बस बस रहने दो, एक बार मिलने से प्यार हो जाता है क्या?
1: यूं तो प्यार बरसों तक भी मिलने से नहीं होता, और अगर होता है तो एक ही मुलाकात में हो जाता है।
0: अपने दिल के कोरे कागज पर कहानी मत लिखो, वरना ये परेशानी उम्र भर

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दिन
0: oh yes September.

0: बुलबुल
1: सच है बिल्कुल यू आर वंडरफुल
0: लग जा गले ए लग जा गले दुनिया जले छम छम छम छम छ छम छ छम ए गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है ए गर्ल तुम काहे को इनकार करता

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: यह कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

मेरी चलो ले जा छल्ला निशानी, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, मेरी मुहा

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

दिन ऐसे बीता जैसे उमरिया बीती, सब कुछ भूल जाना आसान है, सब कुछ भूल।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा शो जिसका आपका होता है इंतजार। जी बिल्कुल, और इसीलिए तो सबसे पहले मैं एकदम टाइम से हाजिर हो चुका हूं आज का 90 जैन न्यू स्पेशल लेकर। सबसे पहले मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने, क्यों है ना। तो आते हैं।

0: बिल्कुल गैम्बलर गैम्बलर गैम्बलर मैं हूँ गैम्बलर। वैसे फिलहाल बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और जुड़ने वाले सबसे पहले हमारे सरफ भाई सरफराज पटेल जी साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अनिल कुमार जी हरिद्वार वाले जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और आत्माराम पाटिल जी आपका भी वेलकम है। संदीप सुतार जी आपका भी वेलकम करते हैं। अशोक देशमुख जी आपका भी वेलकम करते हैं। और सर्वजीत सेठी जी आपका भी वेलकम है। और मनीषा शर्मा जी आपका भी वेलकम करता हूँ मैं। जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है भाई जाकिर जी आपका भी। सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं सर्वेश भगत जी। और एमडी सलीम जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है सलीम जी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी आपका भी वेलकम है। आरिफ सिंध जी आपका भी वेलकम है। काजल झक्का जी आपका भी वेलकम है। और बलदेव राज जी आपका भी वेलकम है। बहुत दिन बाद आए भाई, कहाँ थे, कहाँ गायब थे। ओके तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और आज का सबसे पहला गाना हमारे सर्वजीत सेठी जी का, क्योंकि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, है ना। एंजॉय कीजिए। पहले ही गाना गलती हो गया।
1: दिल ने ये मान लिया है तुम ही हो मेरी मंजिल।
0: मैं प्ले कर रहा हूँ,
1: चाहते हो रहा है कुछ और, पता नहीं क्या होता है।

सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं।

0: तुम।
1: बिल्कुल ऐ सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, तुमसे ही प्यार करते हैं। और बहुत सारे फीडबैक भी आया हुआ है। आमना खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं और खुश आमदेद आपका भी और वालेकुम अस्सलाम। साथ ही साथ हमारे अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। सरोजीत जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। और सर्वेश भगत जी,
2: अरजय अमन सर जी, सुखन दया, नमस्कार। नमस्ते जी, सरजीत सेठी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपका ओपनिंग सॉन्ग भी अच्छा लगा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
1: वेलकम किया आपका। और नंदलाल यादव जी जुड़े हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और कपूर चंद जी आपका भी वेलकम है। और संतोष गौंड जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। संध्या पटेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है दीदी आपका भी। और गोविंदा खंडाटे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और सिया जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और विष्णु चंद्र जी आपका भी वेलकम है। और बलदेव राज जी आपका भी वेलकम है। अनिल नायक जी आपका भी वेलकम है। जितने भी दोस्त हैं जो चोरी चोरी चुपके चुपके भी सुनते हैं, उनका भी वेलकम करते हैं। अगला डिमांड में लिए चलता हूँ आपको नंदलाल यादव जी के पास। सुनना चाहते हैं ये गाना, तो एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, मेरा नाम वैसे फीडबैक बहुत सारे आ चुके हैं, शामिल करता हूँ। पहला सुनील जी।
1: अमन भैया शुभ संध्या, नमस्कार प्रणाम, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से और जुड़ गया हूँ आपके प्रोग्राम से। ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही लाजवाब, आपका तहे दिल से शुक्रिया इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए।
0: धन्यवाद देते हैं आपका भी। और सुनील कुमार जी और हमें सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
2: आरजे अमन सर जी, नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे सुनीता गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका सुनीता गोप जी। आत्माराम जी क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
3: दिल पे है तेरा नाम, ख्यालों में तेरा नाम। वाह भाई नंदलाल जी, आप बातें कम करते हैं लेकिन आपके सॉन्ग बहुत अच्छे रहते हैं सर जी, शुक्रिया आपको। आत्माराम पटेल।
0: बिल्कुल। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि ये दिल में है तेरा नाम, बहुत ही प्यारा गाना, नाइस सॉन्ग। और काजल झका जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा है, ओके। और जाकिर जी लिखते हैं कि ये तो सब जगह तो ये तेरा ही नाम गाना, तो यानी कि पूरा लगा। सुपर चॉइस, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी। और सोनू गौतम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, लिखते हैं कि मेहंदी से तेरा नाम। इसी बात पर अगला गाना जो मेहंदी वाला है सुनवाते हैं काजल झक्का जी के पसंद, और तो एंजॉय कीजिए काजल झक्का जी अपने पसंद को। और उम्मीद करते हैं कि हाँ सभी को पसंद आएगा।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं मेरे पास नंदलाल जी लिखते हैं, सर जी गाना बजाने के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। और एम ताहिर जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब आदाब, वेलकम करते हैं आपका भी। और फीडबैक
1: आरजे अमन सर जी, काजल झा जी अपने गाने में शामिल थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे मनीषा जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग जी बिल्कुल, और अशोक देशमुख जी लिखते हैं काजल जी के पसंद एकदम शानदार लगे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दिल से। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि मेहंदी से ली गोरी हाथ पर मेरे सजना का नाम, अच्छा लगा गाना। संध्या पटेल जी लिखते हैं वाह लाजवाब नाइस सॉन्ग है। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि ये काजल झाका जी के पसंद मेहंदी से ली गोरी हाथ पर मेरे बहुत ही प्यारा लगा है, उनको धन्यवाद देते हैं। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि मेहंदी ये बलमा का गाना मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा है। अशोक इंदपाल जी लिखते हैं कि दिस मेलोडियस एंड एन केयर सॉन्ग, एंड लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और फीडबैक
2: अमन सर जी आपने मेहनत से लेकर गाना सुनाया, पुराने दिन याद आ गए, बहुत बढ़िया गाना अमन सर जी, मेरा भी घूम सुना देना।
0: आपने कौन सा गाना भेजा है, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है आपका गाना, जरा भेजिएगा और सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से जरूर सुनाऊंगा। और आत्माराम जी लिखते हैं कि ये काजल झा जी की पसंद अप्रतिम लगी, उनको बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। अगला डिमांड जो है, मैं क्या बोलूँ, जो गाना मुझे स्टार्टिंग में बजाने होते हैं वो लोग बाद में भेजते हैं, मैं भी यानी मिस, मतलब क्या बोलते हैं, यानी कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि मैं अब क्या करूँ, क्योंकि जो गाने मुझे स्टार्टिंग में बजाने होते हैं वो अब लोग भेजते हैं, मैं क्या करूँ यार, अजीब हाल है। फिलहाल अब बीच में मुझे कहीं ना कहीं उसको यानी कि सेट करना पड़ेगा। अगला जो डिमांड में लेके चल रहा हूँ अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी और सर्वेश भगत जी का ही है, सुनवाते हैं।
3: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार नमस्कार।
3: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम जी।
3: आज का थीम है स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल, तो मुझे एक गीत सुनना है, फिल्म का नाम है जाने तमन्ना और गाने का बोल है मुझे लागी प्रेम धुन तू भी जरा आके सुन। ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉटस्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
0: ओके सर जी, थैंक यू सो मच। और इसी गाने में जैसे कि मैंने कहा कि हमारे सर्वेश भगत जी भी शामिल हैं, तो इनके भी ऑडियो सुन ही लेते हैं सर्वेश भगत जी।
1: अरजय अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार नमस्ते जी। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है जाने तमन्ना और गाने का बोल है मुझे लागी प्रेम धुन।
0: अच्छा अच्छा।
1: हॉट स्टार जो सबको दीवाना बनाते हैं, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरतगंज जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं, हमारा परिवार सतीश भगत हेमंत भगत वर्ष किशोर भगत आनंद शेखर प्रकाश सुनील कुमारी मुनि कुमारी सूरज कुमार मनोज जायसवाल अशोक देशमुख जी आत्माराम पाटिल जी सैयदीन जी संतोष कुमार जी मुन्ना जी आरजे अमन सर जी सुंदरता की मूरत जी आरजे वंशिका जी आरजे आकांक्षा जी आरजे एम एस परमार जी आरजे अदिति जी आरजे सोनी जी आरजे रत्ना जी और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल सभी को सुना दीजिएगा। जयराम जी के
0: आत्माराम जी।
4: हेलो प्यारे आरजे अमन खान सर जी,
0: बोलिए बोलिए।
4: गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सप्रेम नमस्कार जी। मैं आत्माराम पाटिल ग्राम लीहा तहसील मलकापुर जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से आज बिल्कुल आपके प्रोग्राम 90s स्पेशल में मैं एक मूवी लेके आया हूँ सर। मूवी का नाम है जाने तमन्ना, सिंगर है लता मंगेशकर और यह मूवी करिश्मा कपूर पर चित्रित है सर, और लता दीदी ने गाया हुआ एक गीत है मुझे लगे प्रेम धुन तू भी आके जरा सुन, ये गाना बिल्कुल सुना दो।
0: ओह माय गॉड।
4: सबसे पहले गीत मैं आपको सुनाता की मुरत को अशोक देशमुख जी है, सर्वेश भगत जी है और जितने भी अपने रेडियो हटा के सुनने वाले सभी साथियों के साथ मैं ये गाना सुनना चाहता हूँ। मैं आत्माराम पाटिल।
0: एंजॉय कीजिए आत्माराम जी, सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी।

बिल्कुल इनको तो भैया ने प्रेम धुन लग गई है, इसलिए इस गाने का जवाब मैं थोड़ा सा देता हूँ। इंजॉय कीजिए इस गाने को, उम्मीद करते हैं आपको मेरी पसंद भी पसंद आए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं इनकी सुनते हैं।
1: अरजय अमन सर जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तीन भाई का फरमाइश, हमारा अशोक देशमुख जी, आत्माराम पाटिल जी, तीनों भाई का प्रोग्राम में अपने जगह दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे काजल झक्का जी लिखेंगे थैंक यू सो मच मेरा गाना बजाने के लिए। दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और हमारे ईश्वर साबले जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी ईश्वर साबले जी। और आत्माराम जी क्या कहते हैं इनकी सुन लेते हैं।
2: वाह सर जी, वाह वाह वाह, आपने हमारा सॉन्ग चला दिया सर। और वॉइस में हमारे पड़ोसी ने मिर्ची जला दी थी इसलिए थोड़ा रुकना पड़ा।
0: अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है।
2: समझ सकते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल समझ सकते हैं।
2: आत्माराम पाटिल हमारा सॉन्ग बजाने के लिए सर आपको शुक्रिया।
0: ओके जी आत्माराम पाटिल जी। साथ ही साथ अशोक देशमुख जी लिखते हैं धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और यहाँ पे सिया जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गीत था, मुझे लागी प्रेम धुन जी। और यहाँ पे सर जुड़ चुके हैं भाई शेर सिंह सैनी जी। अरे भाई आप कहाँ थे, आप आए, आपका बहुत बहुत वेलकम है। आपके दोस्त लोग परेशान थे, उन्होंने मुझे कॉल लगा दिया कि भाई हमारे शेर सिंह जी का कोई आता पता नहीं चला, जरा उन्हें कॉल लगाइए। मैंने आपको भी कॉल किया था लेकिन आपने कॉल रिसीव नहीं किया। आप यानी कैसे हैं जरूर बताइएगा, आप ठीक ठाक हैं ना, और सब कुछ खैरियत है ना, जरूर बताइएगा। ओह माय गॉड, आरजे कनिष्का जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और मैं आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी आपसे रूबरू होने वाली हैं आरजे कनिष्का जी, वो भी मॉर्निंग डिमांड लेकर, सुबह ये 10 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, यानी कि मॉर्निंग डिमांड ही रहेगा। तो उनका भी साथ दे जरूर, और उनको वो तो भाई तहलका मचाने वाली हैं, बस आप सबके दिल को भाने वाली हैं, बस बहुत मजा आने वाला है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का कि जब इनका शो जल्द से जल्द लाइव हो। और विष्णु चंद्र जी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत। और हाँ ये लिखते हैं कि अमन जी मुझे लागी प्रेम धुन गाना मुझे अच्छा लगा है। आमना जी लिखते हैं कि वाओ अच्छी चॉइस है, थैंक यू सो मच आमना जी, आपको मेरी पसंद ही कम से कम। और संध्य जी लिखते हैं कि वाओ दिल को छू गई थी आपकी चॉइस, तो थैंक यू सो मच। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि अमन जी आपकी पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद। और मनीषा जी लिखते हैं कि दोनों ही सॉन्ग बहुत बेहतरीन लगे, ओ थैंक यू सो मच आपका भी। जाकिर जी लिखते हैं कि आज के सभी गाने सुपर सुपर सुपर लाजवाब चल रहे हैं। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने जा रहा हूँ किन का, आज को मैं क्या ही बताऊँ, सभी गाने माई गॉड कहाँ से मैं शुरू करूँ। अब लगता है कि मुझे फिर से स्टार्टिंग से आना पड़ेगा क्योंकि लोग अभी वाले गाने भेज रहे हैं, जैसे कि क्या ही बताऊं। फिलहाल चलिए मैं रितु जी का डिमांड में प्ले कर रहा हूं, ये सुनना चाहती हैं मेरे सहेलियों मेरे साथ आओ, और इनको कहीं मिल जाएगा इनका बालमा है कि नहीं, तो जरूर गाना में इनका मैं प्ले करूंगा। निकालता हूं मेरे सहेलियों मेरे साथ आओ, इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल इन्हें कहीं तो मिल जाएगा। इनका बालमा और ईश्वरलाल साहब ने जी लेते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लग रहा है पाजीगर का। अच्छा ओके, ये फिर बैक
1: जय अमर सर जी, रितु जी अपने गाने में शामिल के उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी आपका भी, और सर्वजीत सर जी क्या कहते हैं?
2: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिए उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, तो सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: ओके जी, और यहाँ पे कपूर जी लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत अच्छा लगे, धन्यवाद। और संजय जी लिखते हैं शानदार पसंद के लिए धन्यवाद। और जुड़ चुके हैं यहाँ पे प्रीति रायदास जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, यानी कि सिया जी का, और सिया जी सुनना चाहती हैं कौन सा गाना, मैं बता रहा हूँ ना, ये वाला गाना, एंजॉय कीजिए सिया जी।

0: ही मैंने चुन लिया, चुन लिया, बिल्कुल चुन लिया है। ये क्या कहते हैं भाई, इनकी सुननी पड़ती है।
1: जय मानसा जी, सिया जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम है। और अगला जो डिमांड है हमारे MD यानी ताहिर जी का है, सुनना चाहते हैं। और ये सबसे पहले डेडिकेट है अमन जी आपको, आपकी सुंदरता के मुराद जी को। हाय थैंक यू सो मच। और लिखते हैं आरजे वंशिका जी को, स्पेशल डेडिकेट है मैजिकल गर्ल यानी कायनात जी को, और साथ ही कुछ दोस्त शामिल हैं, वो सोनू गौतम जी, इदरीस हिलाल जी है, और यानी प्रिंस पासवान जी और सुनील कुमार जी हैं बाकी बिहार वाले, और जितने भी सुन रहे हैं भी साथी, सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं। तो एंजॉय कीजिए।

और यहाँ पे आ रहा है कि नहीं कंप्लेन यानी किसिया जी का कि वो मेरा गाना गलती प्ले कर दिया। ओके, तो आपने लिंक भेजा था, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी। कोशिश करता हूँ आपके गाने को दोबारा प्ले करने के लिए।

0: ओ माय गॉड, आउच, वैसे गाना बहुत अच्छा लगा है। और विष्णु जी देते हैं कि अमन जी ये मुझे गाना बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं और फीडबैक सुनते हैं।
1: अमन सर जी मेरा भी सॉन्ग सुना दिए, तेरा सजना सुना सजन के बगैर किसका है गाना।
0: अरे सर जी कौन सा गाना है आपका, वो मुझे मिलेगा तब ना, आपने सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेजा ही नहीं है, भेज दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ गाने प्ले करने के लिए आपके। और ये फीडबैक
2: अरे अमन सर जी, एमडी चाहिर जी अपने गाने में शामिल, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे शेर सिंह सैनी जी लिखते हैं कि एमडी चाहिर जी की पसंद मुझे एकदम झकास लगी है, धन्यवाद देते हैं। संध्या जी लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर सॉन्ग। इसी बात पर अगला जो डिमांड है, अब भाई इनकी जो इन मैजिकल गर्ल है उनका भी प्ले ही कर ही देता हूँ, क्योंकि भाई ये तो बदनाम हुई है डार्लिंग इनके लिए, है कि नहीं, तो ये गाना एंजॉय कीजिए। और शायद इसी गाने की डिमांड यानी की है हमारी क्या नाम है, यानी कि संध्या पटेल दीदी जी ने, तो दोनों की डिमांड एंजॉय कीजिए।

0: कोनो बात नहीं के बाबा, जब तक रहेगा समोसे में आलू हम रहेंगे ना तेरा शालू। फिलहाल फीडबैक सुनते हैं।
1: अर्जय अमन सर जी, संध्या पटेल जी अपने गाने में शामिल किए हैं, एक एक बहन और भी है, दोनों मिलजुली फरमाइश। बहुत बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और रूपचंद जी जी लिखते हैं कि धमाल मचाने वाला सॉन्ग है। जी बिल्कुल सही कहा। और हमें संध्या दीदी क्या कहती है?
2: थैंक यू सो मच भैया गाना प्ले करने के लिए। सभी दोस्तों के एक से एक बढ़ के गाने चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है गाने सुन के।
0: थैंक यू सो मच दीदी फीडबैक देने के लिए। और यहाँ पे एम तहे जी लिखते हैं, अमन जी आपने मेरा गाना प्ले किया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। जिन दोस्तों को मेरा गाना पसंद आया उनको भी शुक्रिया। और विष्णु जी लिखते हैं कि गाना तो जबरदस्त एकदम पटाखा चल रहा है। ओके जी, अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, जब तक रहेगा समोसे में आलू।
3: अमन भैया नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और आज की 90 स्पेशल में मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ, और गाने के फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, और गाने के बोल है जब तक रहेगा समोसे में आलू। और ये गाना पहले तो आपको डेडिकेट रहेगा, वंशिका जी को और रत्ना जी को, सोनी जी को, सोनू गौतम जी हैं, प्रिंस पासवान जी हैं, और मुक्तिनाथ जी हैं, और सतीश शर्मा जी हैं, एमडी ताहिर जी हैं, नेकलस जी हैं, अरुण मंडल जी हैं, और शेर सिंह जी हैं, और रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा ये गाना डेडिकेट रहेगा। धन्यवाद।
0: ओके, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल, और वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारा आए हुए हैं। और प्रियंका जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, भाई मुबारक हो, आप जुड़ गए हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और अशोक देशमुख जी देते धन्यवाद सुनील कुमार जी डेडिकेट करने के लिए। और विष्णु जी लिखते हैं कि जब तक रहेगा समोसे में आलू गाना मुझे अच्छा लग रहा है। और नीतू शरण जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि गाना बहुत ही अच्छा है। मनीषा जी लिखते हैं वाह क्या गाना चल रहा है, सुपर सॉन्ग। सोनू गौतम जी लिखते हैं भाई सुनील भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बेहतरीन गाना सुनवाने के लिए शुक्रिया। और संजय पटेल जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग है, नाइस चॉइस है समोसे में आलू। नंदनी माँ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है माँ जी, आपको मेरा प्रणाम है। अगला जो डिमांड है हमारे परवेज आलम रफी गाने से सुनना चाहते हैं जरा सा झूम लूं मैं, आय है क्या गाना है, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

वेलकम है कॉमेडी हॉट स्टार जो दीवाना बना दे और नागेश्वर धाकर जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका नागेश्वर। हाँ, नागेश्वर धाकर जी और कुछ कह भी रहे हैं लेकिन अभी मैसेज नहीं खुल रहा है इनका। नेटवर्क कभी कभी बहुत स्लो हो जाता है, मैं क्या ही करूँ। हाँ, लिखते हैं कि अमन सर जी गुड इवनिंग और हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। अभी दो दिन से मैं संध्या मैम का नाम सुना, शायद वो नई लिसनर है और इनका भी रेडियो हॉट स्टार पर स्वागत है। मैंने तो नहीं सुना है, अब पता नहीं वो कहाँ है, अभी तक तो यहाँ आई नहीं है। और काजल झकाच लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है और धन्यवाद देते हैं। ओके जी। और यहाँ पे संध्या जी लिखते हैं कि अच्छा ये संध्या पटेल, ओके तो ये तो संध्या पटेल जी बहुत दिन से है। तो संध्या पटेल जी लिखते हैं कि जरा सा झूम लो में गाना मुझे अच्छा लगा, ओके। और दिलीप जी लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि दिलवाले दुल्हन ले जाएगा गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद इस गाने के लिए। संदीप सुतार जी लिखते हैं कि जरा सा झूम लो में गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और विष्णु जी लिखते हैं कि बहुत ही मस्त गाना, मजा आ गया। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ वो सोहिल जी का है। और सोहिल जी मेरा फेवरेट गाना सुनवाने के लिए आपका थैंक यू सो मच। सच में काजल तेरी आंखों का काजल, इंजॉय कीजिए फिल्म ये सपूत का गाना।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। सरफराज जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है, बुलंद शहर वाले। ओके जी। और चैट में तो मैं जाता नहीं, अच्छा देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। और संध्या जी देते हैं कि थैंक यू, अच्छा लगा इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए। ओके जी। और आत्माराम जी,
1: हेलो अमर सर जी,
0: जी
1: टुडेज इन 90 स्पेशल ऑल दी सॉन्ग इज वेरी नाइस सर, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आत्माराम पाटिल लिया बुलढाणा।
0: ओके जी आत्माराम पाटिल जी। और यहाँ पे इन विष्णु जी लिखते हैं कि काजल तेरी आंखों का काजल गाना सुंदर लगा है। ओके जी। और यहाँ शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये काजल काजल गाना मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है। और ये क्या कहते हैं
2: अमन भैया, नमस्कार प्रणाम। और फिर से दोबारा जुड़ गया हूँ आपसे, क्योंकि थोड़ा सा काम था जरूरी इसके वजह से। और ये जो गाना चल रहा है, मैंने दिल दिया तो क्या बुरा किया, बहुत ही लाजवाब सॉन्ग, दिल से धन्यवाद है फरमाइशकर्ता को। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से।
0: ओके जी। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ किनका है देखना पड़ेगा नाम मुझे, फिलहाल तो मैं यही प्ले करूँगा। ना कजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो ना। और इस डिमांड को कौन सा दोस्त ले गया है जरा उनका नाम बताता हूँ, ढूंढता हूँ। ये गुड्डू जी है, यानी किसी

0: बिल्कुल वो तो है। फिलहाल यहाँ आरिफ जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना सुनाने के लिए धन्यवाद देते हैं और ये फिर बैठ।
1: आरजे अमन सर जी, गुड्डू जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी। और संजय जी देते हैं कि आज के सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं, बहुत मजा आ रहा है सुनकर। ये सुनते हैं क्या कहते हैं।

0: चले तू उड़े खुशबू जब चले तू बोले तो बजे सिता ना कजरे की धा ना मोतियों की हा ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो तुम कितनी सुंदर हो। अमन भैया अब लाजवाब सुपर हिट गाना और दिल से धन्यवाद है गुड्डू जी को मुजफ्फरपुर से जो जुड़े हुए हैं तो उनका दिल से धन्यवाद। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से।
1: अरे वो सीतामढ़ी से है ओके। और अगला जो आत्मराम जी लिखते हैं कि ये पंकज उदास की आवाज़ में गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है धन्यवाद देते हैं। और मनीषा जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस सॉन्ग है। अगला जो डिमांड है हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी का।
2: कुछ साल पहले एक बच्चे ने इस धरती पर जन्म लिया। और जब पैदा हुआ तो रोए तो बोले रोते हुए रेडियो।

0: बिल्कुल, और यहाँ पे सोनू गौतम जी लिखते हैं कि ना कजरे की धार, गाना मुझे अच्छा लगा है। और विष्णु जी लिखते हैं कि 90% मेरा नेट खत्म हो गया। अरे भाई, तो मैं कहाँ आपका गाना प्ले करूँगा, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, और यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, वेलकम है। और प्रीति रायदास जी लिखते हैं कि मैं एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ, बहुत बहुत वेलकम है आपका फिर से। और इन प्रीति रायदास जी और संध्या जी लिखते हैं कि वो तेरा मस्त मस्त दो नयन गाना मुझे अच्छा लगा है, सुपर चॉइस है। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि गाना तो सच में बहुत ही प्यारा है। ये फिर मैं
1: अर्जय अमन सर जी, दीपक कुमार गायकवाड जी अपने गाने में शामिल की, वो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी। और इसी बात पर जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला है यानी विभूति भूषण जी का है, सुना चाहते हैं, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। अरे बिल्कुल हो गया है।

0: बिल्कुल हम तो इनकार नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हाँ मुझे प्यार हुआ लम्या, और यहाँ पे संध्या जी लेते हैं इतने प्यारे गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये संध्या जी लेते हैं सुपरहिट गीत है जी, और दीपक मैं एक बार जी
1: अमन जी हो गया है तुझको तो प्यार सजना, ये गाना भी बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरा आपने गाना जो बजाया है तेरे मस्त मस्त दो नैन वो भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, और फीडबैक देने वाले हमारे आदरणीय स्वदेश भगत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक गायकवाड़ सीनी मालवा मध्य प्रदेश से।
0: और यहाँ पे समुंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है समुंदर सिंह जी, और अशिल्पा बेन जी लिखते हैं कि वाह अगेन एक्सीलेंट सॉन्ग जी, और रूपचंद गोयल जी लिखते हैं मस्त मस्त मस्त गाना है, सोनू गौतम जी लिखते हैं कि हो गया है तुझको भी प्यार सजना बहुत ही बढ़िया गाना। अगला जो डिमांड है वो गीता शरण जी का है, वो सुनना चाहती है धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमा हो गए सच में।

मेहमा हो गए, सब कुछ हो गए भाई। और वैसे फीडबैक भी बहुत सारा आ गया है। और संदर जी लिखते हैं नाइस सॉन्ग बहुत ही प्यारा है। और अशीर्वाद बहन जी लिखते हैं धीरे धीरे आप मेरे एक्सीलेंट गाने के लिए धन्यवाद देते हैं, बहुत पसंद है गाना। और कपूर चंद जी लिखते हैं गाना सच में बहुत प्यारा। अगला जो डिमांड है वह हमारे किनका है, यानी कि शेर सिंह सैनी जी का, वो सुनना चाहते हैं। आंखों से तूने क्या कह दिया भाई, क्या कह दिया, वही कह दिया। इंजॉय कीजिए।

0: कह दिया और वो प्रमोद कुमार जी लिखने के लाजवाब डिमांड। भाई प्रमोद जी बहुत बहुत वेलकम है आपका, और रवि महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और मनीषा जी लिखते हैं कि ये सॉन्ग तो अमन जी आप पर फिट बैठ जी जी जी धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए जी। बिल्कुल वो वाला गाना जो है ना, इसका जो एक और इन्वर्जन है जो यानी कि करीब यानी कि गजल टाइप का है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितेंद्र जी लिखते हैं धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, बहुत ही प्यारा गाना है। और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि और भाई शेर सिंह जी आपका गाना मुझे लाजवाब लगा है, आंखों से तूने क्या कह दिया है, ये कुमार सन्वर का यज्ञ की आवाज में गुलाम फिल्म का लाजवाब गाना, मजा आ गया है। और संध्या जी लिखते हैं कि आंखों से तूने क्या कह दिया, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और शिल्पा बहन लिखते हैं कि आंखों से तूने क्या कह दिया, बहुत ही बढ़िया गाना, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: अरे मनवा, ये प्रोग्राम तो आज बड़ा फास्ट चला रहे हो, का बात है, आज 9:30 ही घर निकल जाओगे का,
0: लग तो
1: बताइए ना
0: जी। एक्चुअली फास्ट चलाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी डिमांड छूटने वाली है ना। और यहाँ पे यानी सिया जी का अगला डिमांड मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि उनका गाना मैंने गलत प्ले कर दिया था, इसलिए इंजॉय कीजिए सिया जी।

0: ओके जी, और यहाँ पे फिर देखा हुए शामिल करता हूँ मैं।
1: अमान खान सर।
0: यस सर।
1: आज का शो कभी बहते खामोश समुद्र की तरह रूह को बेइंतहा सुकून बख्शता है।
0: अच्छा।
1: तो कभी उफनते दरिया और मचलती मौजों के मानिंद दिल में पुरानी यादों और चाहतों का तूफान उठा देता है।
0: हाय हाय।
1: 90 के दशक से लेकर आज तक के इन सदाबहार नगमों का ये रूहानी सफर हम जैसे सुनने वाले संगीत के चाहने वालों को ऐसे नायाब एहसास में भिगो रहा है जिसके लिए कोई अल्फाज नहीं है।
0: थैंक यू सो मच।
1: जिससे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है और दिल का हर कोना सरोबर हो रहा है आपकी इस पेशकश से। इसके लिए आपको मेरी जानिब से शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे हमारे नंदनी मालिक ने कि आई 90 स्पेशल के सभी गाने सुपर सुपर सुपर प्ले हो रहे हैं। और यहाँ पे सियाजी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और जितेंद्र जी लेते हैं नाइस सॉन्ग। अगला जो डिमांड है वो हमारे रूपचंद गोयल जी का है। सुनना चाहते हैं मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं।

0: बिल्कुल मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो जाए तो क्या करेंगे, और संजय जी देते हैं बहुत ही प्यारा गाना, थैंक यू सो मच। और ये फुटबॉल
1: अर्जय अमन साह जी, रूपचंद गोयल जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी भाई और बहन को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अपने गाने में शामिल किए, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका। और रूपचंद गोयल जी क्या कहते हैं?
2: मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे। अमन सर जी, आपने मेरी पसंद का 90 स्पेशल सॉन्ग सुना दिया, दिल खुश हो गया, मजा आ गया। सर जी एक बात और है, दीपक गायकवाड़ जी के फीडबैक है, वो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद। रूपचंद गोयल, बाड़मेर, राजस्थान।
0: ओके जी। और यहाँ पे शिल्पा बहन जी, मिलते मिलते हंसी वादियों में बहुत ही प्यारा गाना है। और राजीव तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, लिखते हैं कि 90s का बहुत ही प्यारा गाना। और सोनू गौतम जी, मिलते मिलते

0: और कुछ फीडबैक आए हुए शामिल करता हूँ। पहले सर्वेश भगत जी का क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अरजे अमन सर जी, शाहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल करके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।

बिल्कुल जाता नहीं। सुनो गतम जैसे बेकरारी में सनम, वाह क्या लाजवाब गाना है, मजा के धन्यवाद देते हैं। और राजीव कोहली सिंह बेकरारी में सनम बहुत ही जबरदस्त गाना है, जितेंद्र जी सिंह भाई शाह जी के पसंद लाजवाब है। अगला जो डिमांड है वो इन प्रीति रायदास जी का सुनना चाहती है, बहुत ही प्यारा गाना और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती है, तो सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए प्रीति रायदास जी।

बिल्कुल सांसों में संभालूंगा, तुम्हें दिल में बसा लूंगा। और संजय जी लेते हैं गाना, सच में बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और शाहिद जी लेते हैं, थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। और यानी प्रीति रायदा जी लिखेंगे, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे सुनील कुमार जी लिखेंगे, यानी प्रीति रायदा जी की रूहानी पसंद के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को सुनवाने के लिए, बहुत शुक्रिया। और ओके, फिलहाल अगला जो डिमांड है वो सोनू गौतम जी का सुनना चाहते हैं। और ये गाना जो है अमन जी आपको, आरजे वंशिका जी को, एमडी ताहिर जी को, सुनील कुमार जी को, प्रिंस पासवान जी को, और इन प्रीति रायदास जी को, कुंता बेनी जी को, प्रियंका जी को, पूजा भास्कर जी को, काजल झका जी को, और जितने भी दोस्त सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट करना चाहते हैं। तो सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए सारी रात तेरी याद मुझे आती रही, बिल्कुल आती रही भाई।

0: बिल्कुल सही, रात तेरी याद मुझे आती रही और फीडबैक भी आ गया है संध्या जी से। वाह, सभी गाने एक से बढ़कर एक प्ले हो रहे हैं। सुनो गंदन जी, थैंक यू अमन जी मेरा गाना प्ले करने, जिन दोस्तों ने गाने को पसंद करके फीडबैक दिया उनका भी शुक्रिया। प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ब्यूटीफुल डिमांड है आज तो भाई। प्रमोद जी आपको क्या हो गया है, ना आपके गाने की रिक्वेस्ट आ रही है और ना फीडबैक आ रही है, सब ठीक ठाक है ना ये फीडबैक?
1: अमन भैया नमस्कार, हमारे सोनू गौतम भाई जी की लाजवाब पसंद, आज पहली बार ये गाना मैंने सुना है, सारी रात तेरी याद सताती रही। सोनू भाई जी को दिल से धन्यवाद, उन्होंने हमें अपने गाने में शामिल किया, उनका दिल से शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए।
0: ओके जी, और यहाँ पे राजीव तिवारी जी लिखते हैं ये भी गाना सुपर हिट लगा है। अशिता बेन जी लिखते हैं कि ये वाला भी गाना मुझे बहुत ही पसंद है, आया सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। और प्रीत राजा जी लिखते हैं सोनू गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद सॉन्ग डेडिकेट करने के लिए। इसी बात पर अगला जो डिमांड है दो दोस्तों का मैं प्ले करना चाहूँगा, एक है मनीषा शर्मा जी और इन्हीं के गाने में मतलब शामिल हो रहे हैं हमारे, क्या नाम है इनका, अशोक इकबाल जी उत्तर प्रदेश से, वो सुनना चाहते हैं। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर बात करने को जी चाहता है। बिल्कुल

जी चाहता है, जी बिल्कुल, वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, लेकिन बात करने को जी चाहता है। और गजानंद जी लिखते हैं कि वाह अमन सर जी नमस्कार, जुड़ गए हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और प्रमोद जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की डिमांड लाजवाब। राजीव तिवारी लिखते हैं कि ये भी गाना मुझे सुपरहिट लगा है, धन्यवाद। और सुनील कुमार जी लिखते हैं कि वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, मगर बात करने को जी चाहता है, गाना बहुत रोमांटिक और अच्छा लगा है। सिंपल बेंच लिखते हैं वाह क्या खूबसूरत डिमांड है, धन्यवाद। अजय झका जी लिखते हैं गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है, धन्यवाद। और

बस हमें लगा कुछ बोलिएगा भी। यहाँ सोनू गौतम लेते हैं कि वाओ वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है, लाजवाब गाना सुनने को मिला है, मजा आ गया है। और नंदलाल जी लेते हैं कि दोनों दोस्तों की डिमांड बहुत ही प्यारा है और पसंद करने के लिए धन्यवाद देते हैं। मनीष शर्मा लिखते हैं कि वेरी वेरी थैंक यू अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देकर गाने को पसंद करने के लिए। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ आमना खान जी का है, सुनना चाहती हैं राधा कैसे न चले। जी बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो खफा है ना, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो दीवाना बना दे, सुनते हैं फीडबैक।
1: मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले,
0: अच्छा
1: कभी मुस्कान।

0: जले राधा कैसे ना जले।
1: वेलकम जी आपका भी, और यहाँ पे इन प्रमोद कुमार लिखते हैं कि आमना खान जी की पसंद लाजवाब लगी है। और सर्वेश भगत जी,
2: आरजे मोहन सर जी, आमना खान जी अपने गाने में शामिल करने को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
1: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे मनीषा जी लिखते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। राजीव जी लिखते हैं आमना खान जी के पसंद सुपर हिट लाजवाब। राधा कृष्ण जी लगे गाना बहुत अच्छा लगे। अगला जो डिमांड है वो यानी कि भाई यानी कि सोहम जी का है। और सोहम जी सुनिए अपनी पसंद का गाना, मैं दीवाना हूँ। और ये स्पेशली डेडिकेट है इनकी यानी वाइफ यानी सिया जी को।

बिल्कुल। और यहाँ पे संध्या पटेल लिखते हैं ऑसम सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे सिया जी लिखते हैं थैंक यू सो मच सोहम जी। ओके, अगला जो डिमांड है वो जाकिर खान जी का है, और जाकिर खान जी आपकी पसंद को मैं प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते हैं। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं और प्रियंका जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अपन जी स्टार्टिंग में एक सॉन्ग सुनाया गया था जो कि हम थोड़ा सा गुनगुनाना चाहते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार।
0: बहुत देर कर दिया आपने फीडबैक देने में, पहले देना चाहिए था।

0: ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा है, जो कि स्टार्टिंग में सुनाया गया था बट फीडबैक अभी दिया है।
1: कोई बात नहीं है, फिलहाल यहाँ पे गजन अंजलि लिखते हैं मैं दीवाना वाला उदित नारायण की आवाज में, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है और फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
2: आरजे अमन सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
1: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे संध्या पंडित जी लिखते हैं जाकिर जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको धन्यवाद। और प्रमोद कुमार लिखते हैं जाकिर जी थैंक यू सो मच शानदार डिमांड के लिए। आमना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच आरजे अमन जी मेरी फरमाइश को प्ले करने के लिए। और राजीव त्वेल जी लिखते हैं कि ये तेरी आरजू वाला गाना मुझे अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है वो शिल्पा बेन जी का है, सुना चाहती हैं लगी तुमसे लगन। ओके, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल आगे तुमसे मन की लगन। फिलहाल मेरे पास फीडबैक बहुत सारे आए हुए हैं और यहाँ पे राजीव तुम्हें लिख देंगे नहीं, ये तो गाना बहुत पहले प्ले हो चुका है, उसके लिए वो तो नहीं प्ले हो पाएगा, उसके लिए हम सॉरी। और दूसरा भेज सकते हैं अगर सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से, लेकिन वो भी मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा, कोशिश ही करूँगा, क्योंकि बहुत से गाने भी छूटने वाले हैं। जागृत जी लिखते हैं कि सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको, और दोस्तों का भी धन्यवाद। कपूर जी लिखते हैं कि जबरदस्त गाना चल रहा है, मजा आ रहा है सुनकर। मनीषा जी लिखते हैं कि ये सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगा है। ओके, अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ रवि मोहन जी का है, सुनना चाहते हैं दिल को ही बता, एंजॉय कीजिए।

0: अर्जय मोहनसा जी, रवि मुहाले जी अपने गाने में शामिल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
1: वेलकम जी आपका। और प्रियंका जी क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
2: लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन।

0: बिल्कुल आई लव यू और ये फिर
1: बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग हमारे आदरणीय प्रमोद कुमार जी का, मजा आ गया। और इससे पहले मेरा सॉन्ग चला, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अमन सर जी आपको मेरा गाना प्ले करने के लिए, और सभी दोस्तों का भी तहे दिल से शुक्रिया इतने अच्छे फीडबैक देने के लिए। मैं रवि मोहाड़े, बैतूल मध्य प्रदेश।
0: ओके जी, और गजानंद जी लिखते हैं आदरणीय दोस्त हैं प्रमोद जी के पसंद बहुत बेहतरीन लगी है, लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं और ये फीडबैक सुनते हैं।

0: अमन भैया, ये गाना बहुत ही रोमांटिक और बपीता की मधुर आवाज़ों में फरमाइशकर्ता को दिल से धन्यवाद है इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए। मैं सुनील कुमार बांका, बिहार से।
1: ओके, धन्यवाद देते हैं और प्रमोद जी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी मेरा गाना देखने के, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। अगला जो डिमांड है वो सुनीता गोप जी का है, सुनीता गोप जी सुनना चाहती हैं ओ जाने जा, एंजॉय कीजिए।

0: ओ साथिया तू हंसी मैं जाना और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: ये जो अभी सॉन्ग सुनाया था कि सीने में है दिल है समाया, इस सॉन्ग के साथ एक सॉन्ग याद आया

0: बोलो तुम्हें कैसे चाहूं जानूं। ये सॉन्ग और की धुन और वो सॉन्ग की धुन मिलती जुलती है।
1: और प्रमोद जी जैसे बहुत ब्यूटीफुल डिमांड है, धन्यवाद इस गाने के लिए। और ये क्या कहते हैं सुनते हैं जी।

वेलकम बैक और फीडबैक मेरे पास आया है। सुनीता गोप जी की डिमांड मुझे बहुत अच्छी लगी, उनको धन्यवाद। राहुल पासी जी लेते हैं कि हम भी जुड़े हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि जिस पैसे गजानंद सुनकर जी के ग्रुप की डिमांड अच्छी लगी है और धन्यवाद देते हैं, ये फीडबैक सुन लेते हैं।

0: दिन दिन दिन ना, ये बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग और तीनों दोस्तों को दिल से धन्यवाद है इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से।
1: ओके, अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ अनिल नायक जी का। अनिल नायक जी, एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: वेलकम बैक। और यहाँ पे सोनू गौतम जी लिखते हैं गुड़िया रे गाना अच्छा लगा है, और गजन जी लिखते हैं गादरिया मंजी को कैफर नमस्कार है, गाना प्ले करने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो सुनते हैं।
1: हेलो अमन सर
0: जी,
1: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में फीडबैक दे रहा हूँ। और अमन सर जी, आज मुझे ऑफिस से आने से देरी हो गई है, इसलिए मैं ज़रा देर से आपसे कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ। लेकिन अमन सर जी, मैंने मेरा गाना भेजा था लेकिन आपने अभी सुनवाया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी दोस्तों ने फीडबैक दिया है, मैं सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद दूंगा।
0: ओके जी। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि हाँ जी बिल्कुल आपने सही कहा, हो सकता है। राजीव त्रिवेदी जी लिखते हैं कि चोरी चोरी वाला गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं उनका। सुनील कुमार लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, मजा आ गया सुन के, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। नीले सुरकार जी लिखते हैं अमन जी धन्यवाद देते हैं मेरा गाना प्ले करने के लिए। और कपूर जी लिखते हैं नाइस सॉन्ग। अगला जो डिमांड है वो है हमारे बिंदिया जी का, और बिंदिया जी इंजॉय कीजिए।

0: रेडियो हटेटा जो दीवाना वाला सोनू गौतम जी लिखते हैं कि वो पूरी पंजाबन वाला गाना मुझे अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। लक्ष्मी जी बांका बिहार से जुड़ चुके हैं, वेलकम है, लिखते हैं गमन जी गाना ने तो सबकी निंदा उड़ा ले गया जी, धन्यवाद देते हैं इन बिंदिया जी गाना। और ईश्वर इन सामने लिखते हैं कि अच्छा ओके, और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं बिंदिया जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद। राहुल जी लिखते हैं ये शिवम जी के भी गाना मुझे बहुत ही प्यार लग रहा है, और प्रमोद जी लिखते हैं शानदार डिमांड के लिए थैंक यू सो मच, फीडबैक सुनते हैं।
1: अमन जी एक सॉन्ग की डिमांड हमने भी करी है क्योंकि आई एम द बेस्ट, और ये फिर भी दिल हिंदुस्तानी मूवी का सॉन्ग है, और जूही चावला की वॉइस में हो सके तो जूही चावला की वॉइस वाला सुना दीजिए।
0: कोशिश करूंगा आपके गाने को प्ले करने के लिए, लेकिन मैं प्रोमिस करने वाला नहीं हूँ क्योंकि आई एम द बेस्ट। वैसे राजीव तिवारी जी लिखते हैं कि ओके कोशिश करूंगा भाई, अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो कपूर चंद जी का है, कपूर चंद जी इंजॉय कीजिए ये गाना अपना।

0: आरजे अमन सर जी, कपूर चंद जी अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
1: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे कपूर जी लेते हैं, थैंक यू सो मच गाना प्ले करने के लिए। और गजानंद जी से भाई, कपूर जी आपकी गाना बहुत ही प्यारा लगा, अरे वाह रे वाह, मजा आ गया सुन के। और प्रमोद कुमार के शानदार डिमांड कर, धन्यवाद। और यहाँ पे यानी लक्ष्मी जी बांका बिहार से लिखती है कि ये तेरी पतली कमर वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगे, धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो जितेंद्र जी का सुना रहा हूँ, शरारा शरारा, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक लिखने के कार्यक्रम, मुझे बहुत अच्छा लगा है आज का, धन्यवाद देते हैं। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं, थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और प्रमोद जी लिखते हैं एकदम मस्त चॉइस है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। कपूर जी लिखते हैं कि आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, जरा मुझे बताइएगा खुलकर। और गजानंद जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त जितेंद्र जी के पसंद बहुत अच्छे लगे, उनको धन्यवाद। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ वो संदीप सुतार जी का, संदीप सुतार जी सुनना चाहते हैं दिल मेरा मुफ्त का, एंजॉय कीजिए।

के सारा सारा गाना अच्छा लगा है, धन्यवाद। और हरीश्वर लाल ये ईश्वर यानी सामने जी लिखते हैं कि ओके। और गजानंद जी लिखते हैं संदीप सुधार जी को पसंद मुझे अच्छी लगी है, धन्यवाद। राहुल पाठक जी लिखते हैं सारा सारा गाना अच्छा लगा है, धन्यवाद। तो उनको भी और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे अभिषेक तिवारी जी का। अभिषेक तिवारी जी इंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: सच बात है भाई, अब जैसी भी बीवी हो, वो चाहे गोरी हो, काली हो, मोटी हो, पतली हो, है ना। राहुल जी लिखते हैं कि ये गाना अच्छा लगा है, नाचू आचू। और यहाँ पे प्रमोद जी ने शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। दीपक कुमार गायकवाड़ जी क्या कहते हैं?
1: अरे अमन भैया, रोज दाल चावल खा खा के मैं हो गया बोर, रोज खिचड़ी खा खा के हो गया मैं बोर, पर रेडियो हॉट स्टार पर जब गाने बजे तो ये दिल मांगे मोर मोर मोर। रेडियो हॉट स्टार, गाने की प्यास कभी कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। धन्यवाद, मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा से।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं। और एमडी अयूब अंसारी जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग जी, वेलकम करते हैं आपका। अयूब जी, कपूर जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी। और गजानंद जी लिखते हैं भाई कपूर जी की पसंद बहुत ही अच्छी लगी, उनको धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
2: अमन सर जी, कपूर चंद जी विनर बने, उनकी पसंद का दूसरा गाना भी दिल खुश कर देने वाला, मजा आ गया। रूपचंद गोयल, बाड़मेर, राजस्थान।
0: जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये फीडबैक सुनते हैं सुनील कुमार जी क्या कहते हैं।
3: करम फूट गए उन मर्दा के जिनकी जोरू मोटी से, मोटी से भाई मोटी से, अरे दरवाजे में अटक गई तो, दरवाजे में अटक गई तो खैचम खाची हो री से, खैचम खाची हो री से, एरी छोरी मालन की। कपूर जी का दिल से धन्यवाद है इतना अच्छा गाना सुनवाने के लिए। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से।
0: अगला जो डिमांड है वह हमारे इद्रिस हिलाल जी का है, सुनना चाहते हैं सर। कई लोग खटिया, इनको अभी इसे ज्यादा लग रहा है भाई, क्या बात है, सुनवाते हैं।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटेस्ट राजू दीवाना वाला कपूर जी लिखते हैं सुपर सुपर से सुपर ऊपर वाला सॉन्ग है और राजू तिवारी जी लिखते हैं कि सरकारी लोग खटिया वाला गाना अच्छा लगा है और फिर भी सुनते हैं
1: सर कायलो खटिया जड़ा लगे अमन सर जी इस गीत ने तो गर्मी में भी सर्दी वाली फीलिंग एहसास करा दी।
0: अच्छा
1: मजा आ गया रूपचंद गोयल।
0: ओके अगला जो डिमांड है वो नीतू सरन जी का है और सुनना चाहती है बिन साजन झूला झूल। इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल। और यहाँ पे फीडबैक आ चुके हैं, सुन कुमार जी लेते हैं कि सर कहीं लोग खटिया जाड़ा लगे वाला गाना सुपर फरमाइश लाजवाब सॉन्ग के लिए धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक सुनते हैं,
1: पढ़ने लगी है कड़ाके की सर्दी।

0: गर्मी में
1: गोविंदा और करिश्मा कपूर जी का सॉन्ग है जो कि काफी खूबसूरत है।
0: ओके, और यहाँ पे राहुल जी लिखते हैं सरकारी लोग खड़िया गाना, मतलब गाना मुझे अच्छा लगा है। और चिंता बहन जी लिखते हैं बिन साजन झूला झूलो, बहुत ही प्यारी डिमांड है। जागृति लिखते हैं सरकारी लोग खटिया, सुपर डिमांड के लिए थैंक यू सो मच, मजा आ गया। और प्रमोद कुमार लिखते हैं बिन साजन झूला झूलो भी बहुत ही प्यारा गाना है। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ, यानी विष्णु चंद्र जी का, सुनना चाहते हैं बावला हुआ मैं बावला, इंजॉय कीजिए भाई।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना मतलब प्रमोद जी देते हैं भाई विष्णु जी की पसंद मुझे अच्छी लगी है धन्यवाद देते हैं उनको और राजीव तिवारी जी के बावला हूँ मैं बावला बहुत ही अच्छा गाना सुपर पसंद है और ये फीडबैक।

0: अमन जी, अभी पता है हमें कि अभी गर्मी चल रही है, पर बात हमने सर्दी में रजाई ओढ़ने की करी थी। बाकी सॉन्ग दोनों ही बहुत अच्छे हैं।
1: धन्यवाद देते हैं आपको। और यहाँ पे गजन जी लिखते हैं बावला हूँ मैं, बावला बहुत ही बेहतरीन पसंद के लिए धन्यवाद देते हैं। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं वाह बावला हूँ मैं बावला, वो गाना बहुत अच्छा लगा है। और ये फीडबैक सुनते हैं।
2: बावला हूँ मैं बावला, बावला हूँ मैं बावला, बावला हूँ मैं बावला, बावला हूँ मैं बावला। अमन भैया सुखविंदर सिंह की मधुर आवाज़ों में ये गाना बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग, और दिल से धन्यवाद है फरमाइश करता को।
1: ओके धन्यवाद देते हैं आपको भी। राहुल जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है, और ये क्या कहते हैं भाई।
3: अमन सर जी हमारा भी सॉन्ग भेज दीजिए, ये तेरा सजना सवरना बिन साजन के बेकार है, हमने कब आपसे कहा था आपने भेजे नहीं।
1: अरे भाई आपने कहाँ कहा था, अच्छा कोई बात नहीं, ये तेरा सजना सवरना ठीक है मैं सुनाया था आपको, इन्जॉय कीजिए गाने को।

0: ओके जी, और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं ये तेरा सजना सवाना गाना अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और राजीव जी लिखते हैं रेडियो हॉटस्टार वो सुने बिना तो बिना यानी मजा बेकार है, ये फीडबैक सुनते हैं।
1: क्या बनेगा मेरा साजन, क्या बनेगा मेरा बालन, जा तू आशिक बेकार है, ये तेरा सजना सवरना बिन साजन के बेकार है, मेरी लाखों का जोबन, जा तू आशिक बेकार है।
2: बहुत ही प्यारा सॉन्ग है।
0: ओके जी, और फिलहाल अगला जो डिमांड है हमारे नागेश्वर धाकर जी का, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल। और ये फीडबैक सुनते हैं प्रियंका जी का।
1: कबूतर बोले कबूतर से, कबूतर से मुझे छेड़ना छत के ऊपर से, मुझे छेड़ना छत के ऊपर से। और इस सॉन्ग के साथ मुझे एक मुहावरा याद आ गया कि घर की मुर्गी दाल बराबर। और इस तरीके से कई सॉन्ग हैं जो कि पक्षियों पे होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है।
0: ओके, और यहाँ पर राजू तिवारी लिखते हैं कबूतरी बोले कबूतर से गाना अच्छा लगा। अगला जो डिमांड है वो हमारे गोपाल पाटीदार जी का है।
2: नमस्कार अमन सर जी, मैं गोपाल पाटीदार रतलाम मध्य प्रदेश से। आज मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ, कभी बंधन चुरा लिया कभी दामन छुड़ा लिया ओ साथी रे। सबसे पहले ये गाना आपको डेडिकेट रहेगा और वंशिका जी को और सुनने वाले सभी दोस्तों को भी डेडिकेट है। थैंक यू।

0: बिल्कुल कभी बंधन जुड़ा जाएगा ना। सच में बहुत प्यारा लगा ना। और यहाँ पे जाने सार अक्सर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। अभी राजीव तिवारी जी लेते हैं कि हम तुम्हारे सनम का गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और पीकू राय जी जुड़ चुके हैं। भाई अब जुड़ने का क्या फायदा, क्योंकि अब तो मैं निकलने वाला हूँ ना। शिल्पा बहन जी लेते हैं कि कभी बंधन जुड़ा लिया गाना सच में बहुत ही प्यारा लगा है। एम डी आयुष जी लेते हैं कि ये भी गाना बहुत ही प्यारा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक सुनते हैं, क्या कहते हैं प्रियंका जी?
1: अमन जी हमारा सॉन्ग तो सुना देते हैं आप।
0: नहीं, उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, सॉरी। और अब अगला एक गाना जो यानी मेरी पसंद का है आप सबके लिए मैं प्ले करके जा रहा हूँ। और इसी गाने के साथ दीजिए मुझे प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक ले शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय। अपने और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे।

जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है, लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 12 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता।
1: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
0: फिर भी जरूर, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
1: सोचने दो,
0: बुरा मत मानना जरी, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूं,

0: तुम मुझे प्यार करते हो।
1: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
0: तुम मुझे प्यार करते हो।
1: फिर मेरे कॉलेज के यही आखिरी साल है, बीए के बाद अब पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
0: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
1: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन
0: प्यार करते हो ना?
1: पर जरीन तुम
0: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो?
1: हंस नहीं रहे दोस्त, रो रहे हैं तुम्हारी अकल पे और हम सबकी बेखूबी पर। एक दीवाने ने ख्वाब देखा जंगल में और उसकी तस्दीक के लिए हम सब दीवाने तुम्हारे दरबार में पहुंच गए।
0: ये दीवानगी नहीं, हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से उन दो इंसानों को सांप बनते हुए देखा है।
2: विजय, पहले तो तुम्हारी सिर्फ दिमाग पे शक था, अब मालूम होता है कि तुम्हारी आंखें भी जा रही हैं।
3: हम ये कैसे मान सकते हैं यार कि एक सांप जब चाहे इंसान का रूप धारण कर ले और जब जी में आए फिर से सांप बन जाए।
4: मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं।
1: मुझे तो सोचकर भी हंसी आती है यार।
0: चंद साल पहले तुम्हारे जैसे लोग चांद पर जाने वालों पर ऐसे ही ऐसा करते थे।
5: ओ फिलोसोफर साहब, आप अपनी फिलॉसफी से सच को झूठ में नहीं बदल सकते।
0: अरे भाई, ये इच्छाधारी सांप सदियों से है और जो बात सदियों से सच है वो आज भी सच है, समझे?

0: गोली किसने चलाई?
1: मैंने।
0: क्यों?
1: अगर मैं गोली नहीं चलाता तो नाग उस लड़की को डस लेता।
0: वो लड़की नहीं है बेवकूफ, वो नागिन है, और जिस नाग पर तुमने गोली चलाई है उसे मैं इंसान के रूप में देख चुका हूँ, उससे बातें कर चुका हूँ।
2: लेकिन अब क्या करूँ, पिस्तौल से निकली हुई गोली वापस तो नहीं आ सकती?
0: जिस तरह पिस्तौल की गोली वापस नहीं आ सकती, इसी तरह नागिन का बदला कभी टल नहीं सकता। कहते हैं मरने वाले नाग की आंख में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है, और नागिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो खून का बदला न चुका ले।
3: तो अब क्या किया जाए?
0: किरण के बचने की सिर्फ एक ही सूरत है, हमें फौरन उस नाग को ढूंढ के जमीन में दबा देना चाहिए ताकि वो नागिन अपने नाग की आंख में इसकी तस्वीर न देख सके।
3: लेट्स सर्च।
0: हाँ चलो।

अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। अब अगर तुमने बेवफाई की तो खुदा कसम हम इन्हीं लहरों में डूब मरेंगे।